फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। दिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, 10 तारीख जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। 4 मिनट ओवर सेवन। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302560 65 60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0302260 66 11। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं दुनिया की कोने कोने तक। हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी आप सुन सकते हैं अपना मौतकार में अपना घरों में। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल भी कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। अपना मोबाइल टेलीफोन पर जरूर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रवीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह की तरह सुबह भी प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पहला भजन जो हमेशा होता है सुबह सुबह लो शिव का नाम, इसी सुंदर भजन के साथ भजन यात्रा प्रोग्राम बस आरंभ किया जा रहा है और ये सुंदर भजन रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई है। 7:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज शुक्रवार का दिन 10 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज भी गर्मी सा मौसम बस होने वाले है हॉलैंड देश के अंदर में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो चले प्रोग्राम में सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की सरिये कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03226611।

इधर ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 3 मिनट बाकी है सुबह 7:30 में रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। एल्बम का नाम है मेरे मन में है राम, उसी एल्बम में से निकालकर ये सुंदर भजन विपिन की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। हम आपको ले चलेंगे आज की शुक्रवार की खास सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा में। हम आपको ले चलते हैं अनूप जलोटा जी की ओर। अनूप जलोटा जी की आवाज में एक भजन पेश किया जा रहा है आप

भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

और रेडियो SBS के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार खास सुंदर भजन

तो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं श्री महालक्ष्मी चालीसा की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आरती भजन पेश होगा।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुन वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुन वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए और खासतौर पर सभी सुन वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए भी ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।

किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज का मौसम जो है खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है, धूप ही धूप का मौसम और काफी गर्मी सा मौसम। आज शुक्रवार का दिन बस होने वाले है। टेम्परेचर आज का 29 या कहीं कहीं 30 ग्राद हो सकता है। 28 और 30 डिग्री के बीच में होगा आज का मेरा टेम्परेचर। तो आप सभी सुन वालों को शुभ दिन। और गर्मी सा मौसम होगा और इस मौसम में जरूर ज्यादा हिस्सा में पीना ही चाहिए। अलका एंड अभिजीत, चलिए फिल्म फुटपाथ की ओर। एक फिल्म जो 2003 में रिलीज

आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर, और उसी वेबसाइट के जरिए न सिर्फ हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल के जरिए, लेकिन उसी वेबसाइट के जरिए भी आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। कुमार सानू एंड वेलकम।

अब उस प्रोग्राम में पेश की गई खास तौर पर कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एड फिल्म गैर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की शुक्रवार की खास सुबह की प्रोग्राम में। दूल 30 262 66 11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो एसपी

0: प्रोग्राम में पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। समीर कुमार एंड अलका याग्निक प्रोग्राम में

सुनने वालों 9 बजकर प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर सुबह की तरह आज सुबह भी 9 बजे से लेकर के अब तक करीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये प्रोग्राम हर सुबह गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और बहुत सी सुनने वालों भी होते हैं जो सुबह के वक्त गर्मा गर्म कॉफी चाय लेकर के इस प्रोग्राम को सुनते हैं, तो आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से गर्मा गर्म कॉफी चाय

गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। पहला गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना। 9:05 वेटेड हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: से जल मौसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा
1: द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा। फिल्म का नाम इज्जत, धर्मेंद्र का

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की प्रोग्राम में गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, लता मंगेशकर की आवाज में। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम प्यार का सपना। ये जिंदगी हमारी, क्या खूब जिंदगी है।

गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। चलिए प्रोग्राम में शमी कपूर का एक एक्टिंग किया हुआ गाना की ओर, द फिल्म दिल देके देखो, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम देखे देखो। उषा खन्ना का संगीत पर यह गाना पेश किया जा रहा है।

Zullen we wel een studio telefoonnummer 030-262-6611. चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

राज कपूर का एक्टिंग किया हुआ गाना, एडो फिल्म दीवाना, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत और शंकर जय किशन का मधुर संगीत पर ये गाना पेश की गई है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। तो चले प्रोग्राम में आपकी बाहर फिल्म तेरे मेरे सपने की ओर। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

एक गाना बस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं और गाना पेश कर रहे हैं सभी सुनने वालों के लिए, हर एक के लिए। ये गाना देहरादून शहर की रहने वाली उषा बस पेश कर रहे हैं, आदमी और इंसान फिल्म का नाम, आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर प्रोग्राम में।

राशिया जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, और खास तौर पर देनहाग शहर की रहने वाली उषा ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और सभी सुनने वालों के लिए बस ये गाना को पेश किया है। उषा गाना मांग करने के लिए और स्टूडियो की ओर तार करने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद और एक शुभ दिन और अभी से एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। गर्मी सा मौसम बस होने वाले हैं वीकेंड में, तो इस गर्मी सा मौसम में सुनने वालों ज्यादा हिस्सा में पीना चाहिए और सबसे बेहतर होता है कि आप पानी पिए, पानी पीने से और अच्छा होता है इस गर्मी सा मौसम में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और हमारा प्रोग्राम भी काफी जोर तोर से भी सुनते हैं, खबर किया है कि हाई वॉल्यूम के साथ यानी कि रेडियो जो है काफी तेज आवाज में खोला हुआ है, और वो है खास तौर पर यूट्रेख्ट लाइट्सरेन का रहने वाला, यूट्रेख्ट लाइट्सरेन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी इस वक्त गार्डन में बैठे हुए हैं, अभी अभी फोन किया है और कहा सामने गर्मा गर्म कॉफी है और आपकी रेडियो हम सुन रहे हैं और रेडियो की आवाज जो है मैंने काफी तेज खोला हुआ है ताकि अगल बगल के लोग पड़ोसी लोग भी आपकी रेडियो को सुने। तो इसी तरह से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और मांग किया है माइटी मुकेश की आवाज में, और गाना का बोल है मैं आशिक हूं बहारों का, स्पेशल यूट्रेख्ट लाइट्सरेन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का खास मांगी हुई गाना।

खास गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई, खास तौर पर द माइटी मुकेश की आवाज में, माइटी मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म का गीत पेश हुआ है। 1962 का फिल्म, 1962 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना, यूट्रेख्ट लाइटसे रैन। गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भाई राजन गिरधारी आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश होगा लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में गाना बस सुनते ही रहना। और देनहाग शहर से सिंथिया सुक्खू गाना मांग किया है अपने प्यारा प्यारा हैंग के लिए बड़ी प्यार के साथ। चले मिलकर सुनते हैं लता जी की आवाज में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में, और ये गाना आज की प्रोग्राम में स्पेशल मांग किया दरहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू अपने प्यारा प्यारा हैंग के लिए बड़ी प्यार के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना सिंथिया सुक्कू अपने प्यारा प्यारा हैंग के लिए मांग किया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है सिंथिया और हैंक, और रेडियो SBS का प्रोग्राम अगर हो सके तो जरूर सुनते ही रहना। मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम है, कुछ लोग भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन मत भूलना डेया बे प्लस द्वारा साउथ हॉलैंड में, हॉलैंडीज के बीच में मेदर नीदरलैंड में भी सुनाई देता है, और वैसे ऑनलाइन अपना मोबाइल के जरिए भी हमेशा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं शारदा की आवाज में। फिल्म सूरज का गीत आप सुनते ही रहना, और गाना दनहाग शहर की रहने वाली कमला, कमला गाना को मांग किया है अपने भाई और भौजी के लिए। स्पेशल दिन है तो स्पेशल कमला दनहाग शहर की रहने वाली अपने भाई और भौजी के लिए ये गाना मांग किया है। सूरज फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म सूरज का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर देहरादून शहर से कमला कमला ये खास गाना अपने भाई और भौजी के लिए स्पेशल मांग किया। आज स्पेशल दिन जो है तो ये खास गाना मांग किया बधाइया ही बधाइया के साथ। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इंडिया भारत देश नोएडा में हमेशा की तरह आज भी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम अरुणेश बस सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है पूरा परिवार को और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। इंडिया भारत देश अलीगढ़ में हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं धर्मेंद्र चौहान, आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारा सूरीनाम देश में हम देख रहे हैं हेलन भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। हेलन हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम सूरीनाम देश में बस सुनते हैं। हेलन आपको भी एक बड़ी ही खूबसूरत सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और उसके साथ रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। अभी अभी तार किया स्टूडियो की ओर, ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है और खबर किया है कि रेडियो SBS उनको काफी पसंद आते हैं, खासतौर पर गाने जो पेश किया जा रहा है सुबह के वक्त पुरानी नगमे का प्रोग्राम जो है उनको काफी पसंद आते हैं। तो खासतौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय एक गाना मांग किया है द माइटी मूकीज की आवाज में, फिल्म का नाम आनंद कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

आपको खबर किया जा रहा है स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 2-30-22-66-11 और ये टारगेट नंबर रेडियो SBS का वेबसाइट पर भी होता है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। रेडियो SBS संगीत भरी स्टेशन, मतलब होते हैं SBS का संगीत भरी स्टेशन, जहां पर संगीत

तो एक रेडियो स्टेशन पर अपना रेडियो जो है लगाए रखना, तो उस पर आपको सभी और सभी खबर मिलेगा, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकियर्स इंफॉर्मेशन। स्पाइकनेस शहर से हेंड्रिक और सीता, हेंड्रिक और सीता बसंत एक दूजे के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम एक हसीना दो दीवाने। स्पाइकनेस शहर से हेंड्रिक और सीता बसंत ये खास गाना एक दूजे के लिए बस मांग किया है।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और खास तौर पर ये काफी प्यार भरी गाना मांग करने वाले थे स्पाइकनेस शहर के रहने वाले हेंद्र कौर सीता बसंत एक दूजे के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना बस पेश किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना स्पाइकनेस शहर में। 10:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है शुक्रवार 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है। अभी से हम आपको याद दिलाते हैं शुक्रवार 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और मुस्कुराता दुकान जो है हॉलैंड देश के अंदर में सबसे बड़ा दुकान जो होते हैं जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े हर एक कपड़े गहने और हर एक सामान आपको दिया जा रहा है सस्ती दामों में। उसी दुकान के पास आने वाले सप्ताह से आप जाकर खरीद सकते हैं अपना रक्षा बंधन एकदम बिल्कुल बोडम प्राइस में सस्ती दामों में आपको दिया जाएगी। मुस्कुराता दुकान के पास आने वाले सप्ताह जाकर आप अपना रक्षाबंधन अपना राखी जो है आप यहां पर सस्ती दामों में खरीद सकेंगे। एक से एक खूबसूरत रक्षाबंधन राखी आपको दिया जाएगी जो आप सस्ती दामों में जाकर खरीद सकते हैं देनहाग शहर के अंदर में कारल रोस्त्रात नंबर 4 पर मुस्कुराता दुकान।

चले प्रोग्राम में और भी सुन वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं आम्स्टरडम शहर की ओर। आम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया भी तार किया है। हाँ, कभी कभी

मांग करना चाहते हैं तो ऐप कर रहे हैं। तो आज की प्रोग्राम में मांग किया है आम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया लता जी की आवाज में एक खास गाना।

सुमलता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आम्स्टरडम साइडोस की रहने वाली श्रीमती बेया ये खास गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए बस पेश की गई आसरा उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद किया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आम्स्टरडम शहर के अंदर में जरूर सुनते ही रहना। जहां पर आम्स्टरडम शहर के अंदर में बहुत सी सुनने वाले होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम

गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना होगा फिल्म ब्रह्मचारी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए। फिल्म ब्रह्मचारी दलेच शमी कपूर का फिल्म है। फिल्म जो 1968 में 1968 में रिलीज किया गया है और जिस फिल्म में काफी खूबसूरत नगमे लाए गया है रफी साहब की आवाज में। एक गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में और देखा जाए तार किया रोटरडम शहर से हारोल्ड भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और खबर किया है कि हर सुबह हमारा रेडियो जो है ऑन रहता है रेडियो SBS पर और पुरानी फिल्में गाने की इंतजार में हमेशा होते हैं सुबह की वक्त गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो हारोल्ड लीजिए आपकी मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम ब्रह्मचारी। एक गाना जो हमारी बहुत सी सुनने वालों भी पसंद करते हैं। सुनने वालों आप भी गाना मांग करना चाहेंगे टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और इसी तार के नंबर पर हमेशा भी आप ऐप कर सकते हैं।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और खास तौर पर इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला अरुणेश के खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। ये गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से प्रोग्राम में पेश की गई। बस शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सी सुनने वालों तार किया है, ऐप किया है, अपना अपना गाना को मांग किया है। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम को रचाने और सजाने के लिए। जिस तरह से हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं लेलिस्तात शहर के अंदर, लेलिस्तात शहर की रहने वाली शलिनी जगई भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में।

रेडियो SBS की सर ये मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लेलिस्ता शहर की रहने वाली है शलिनी जगाए ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शलिनी आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। फोर्ट बेरोक शहर में सोनिया इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में गाना मांग किया है तलत महमूद और लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम प्रेम पत्र, उसी फिल्म का गाना फोर्ट बेरोक की रहने वाली सोनिया ने मांग किया है।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई प्रेम पत्र फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और खासतौर पर गाना को मांग करने वाली थी फोर्ट ब्यूरोख की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो उम्मीद है सोनिया अपने मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनवालो 14 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह साढ़े 10 बजकर और तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम आप सभी सुनवालो की सेवा में बस पेश किया जाएगी हर सुबह। हाँ, हर सुबह ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेकर के

रहा है 21, 22 और 23 तारीख अगस्त, 21, 22 और 23 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल इस साल होने वाले हैं 21, 22 और 23 अगस्त। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहला एर्स्ट और सबसे बड़ा द ग्रोथ मिलन जो हॉलैंडीज के अंदर में होते हैं और इस साल फॉर द 42वें ईयर होगा मिलन समर फेस्टिवल साइड पार्क डेन हाग शहर के अंदर में, जहां पर हजारों लोग आते हैं। एक मिलन जिसमें बहुत से ग्राम्पियस होते हैं, तरह तरह के ग्राम्पियस खाने पीने के लिए

kraampjes met heel veel informatie, gezondheid के बारे में भी, बच्चों के लिए यहाँ पर भी ढेर सा अट्रैक्शन होते हैं। तो कहिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर इस मिलन में, मिलन समर फेस्टिवल में होता है। 21, 22 एंड 23 अगस्त होने वाले हैं। और खुशी के बात तो ये रहा कि 21 फ्राइडे 21 अगस्त लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद फुल बैंड के साथ, म्यूजिक ग्रुप डीले नादान के साथ लाइव ऑन स्टेज मिलन समर फेस्टिवल में हाजिर होंगे। वही मशहूर गाने वाला रेमोन रामनारायण मिलन सुमर फेस्टिवल में। हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है मिलन सुमर फेस्टिवल .nl और फॉर क्राम फॉर इसी वेबसाइट पर आप जाइए और अपना टिकट के लिए भी इसी वेबसाइट पर आप जाइए तो जरूर और जरूर मुलाकात होगा मिलन समर फेस्टिवल साइड पार्क डेन हाग में 21, 22 एंड 23 अगस्त। रोटरडम शहर के अंदर में रिया भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और रिया स्टूडियो की ओर तार किया है और एक गाना मांग किया है लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम फर्स्ट

इसका गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और देखा जाए रोटरडम शहर की रहने वाली रिया ये गाना बस मांग किया आज के ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रिया आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। और प्रोग्राम जरूर इसी तरह से सुनते ही रहना। सुनवालू घड़ी की ओर देखा जाए 8 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में एक आखिरी सुनवालू की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। और आप सभी से भी निवेदन है गुजारी से गाना के लिए मत तार करने के लिए या तो ऐप करने के लिए। एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना पेश होगा और एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। अब की बार हम आपको ले चलेंगे बारनद्रेख्त। हाँ, देखते हैं बारनद्रेख्त शहर का रहने वाला, नाम तो बड़ी ही खूबसूरत है, नाम है प्रेमनाथ। प्रेमनाथ एक गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, सुनना चाहते हैं मुकेश और लता जी की आवाज में बारनद्रेख्त का रहने वाला प्रेमनाथ का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: Tropisch Idee. Op sub hier zullen we ook hier zijn van meer. Barendrecht, Shaharse Targia. प्रेमनाथ ने डार किया और ये गाना आज के ये प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। बस भाई प्रेमनाथ आपकी डार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और इसी तरह से प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लेते ही रहना। एक मिनट बाकी है 11 बजने में। सुन वालों कल शनिवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। आज के प्रोग्राम में सभी सुनने वालों जो तार किया, ऐप किया और गाना मांग किया, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

यूली का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का मौसम भी गर्मी सा मौसम, टेम्परेचर 28 एंड 30 ग्राड, 28 और 23, या कहिए 28 और 30 डिग्री, इसके बीच में आज का टेम्परेचर जो होगा। गर्मी सा मौसम, धूप ही धूप का मौसम, तो चले इस मौसम में ये गाना की ओर।

नई संगीत में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई सरस्वती चंद्रा फिल्म का गाना बिल्कुल नई आवाज में और नई संगीत में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम भी अपना मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं।

संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की सुबह की प्रोग्राम में पेश होगा रेडियो SBS के जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना। जबकि 11 मिनट बैठी हो चुका है सुबह, सर है 11:00।

दिखाई है। रेडियो SBS के जरिए कुछ गाने नए आवाज में, नए संगीत में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे अबकी बार ये गाना की ओर। ये गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

सुन वालो रेडियो SBS का पता टेम्स ड्राइव 237 वहां से ये प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से। एक गीत और होगा उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, यानी कि रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फरकियर्स इन्फॉर्मेशन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। एक गाना पेश होगा और वो भी फिल्म करण अर्जुन, उसी फिल्म का गाना नई आवाज में नए संगीत में बस पेश किया जाएगी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है गाना जो आप सुनेंगे, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आपकी बार पेश किया जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं, मेरा की ओर अभी से आप सभी सुनने वालों को अनहेल खुद मेरा खबर मिला है कि बाहर काफी और काफी गर्मी

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अर्जुन सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रिया जी की ओर। श्रिया जी की आवाज में अब की बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खासतौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

अतिथि नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में सपने साजन की फिल्म का नाम

गए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

सुनिए तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई है, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

030-262-6611. Our Radio SBS website, radiosbs.nl. किशोर कुमार के बाद मुकेश एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम गंगा की लहरें।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। उसी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, मोहम्मद रफी के बाद हम आपको ले चलेंगे दिलीप कुमार और विजयंती माला का एक खास फिल्म की ओर। गंगा जमुना फिल्म का नाम है, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में पुरानी फिल्म गंगा जमुना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। 1961 का फिल्म है, 1963 का फिल्म गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया है। तलत महमूद जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, से रामचंद्र का संगीत पर आप

गोल्डन वॉइस दलित महमूद जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। श्री रामचंद्र का है संगीत पर, ये काफी पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। चले फिल्म घराना की ओर, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो, फिल्म घराना का गीत।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम घर। किशोर एंड लता

0: अच्छा जी की आवाज में ये खास गाना अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। किशोर कुमार
1: बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए।
0: किशोर कुमार की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

हर जगह से नमूने मंगाए गए, सात घोड़े गधे सब बुलाए गए, हर जगह से नमूने मंगाए गए, सात ऐसी शक्लें जिन्हें

चीक चीक बम चीक चीक बम बम चीक बम बम चीक बम बम ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े सारे हरमान शादी के ठंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे बाप दौलत लूटा हा।

कुमार की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसकी सरिये आपने सुना किशोर कुमार के बाद हेमंत कुमार प्रोग्राम में।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार लता जी की आवाज में एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशली करमलाल, दू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: मत ने लंका।
1: माता, मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

यही एक पल है। आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

तुझ में क्या है दीवाने, खसौंद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर को हम आए द फिल्म बड़े दिल वाले, हाउ द फेदर मैट आए द फिल्म मलंग, हमरा इज इट लीचे।

काम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

वास्तविक फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। इसका सॉन्ग दौर उदित नारायण एंड अलका याचिक। इन प्रोग्रामा गीतों के लहर से फोहत लीजिए बंधु मेरा द फिल्म जवान जाने बन।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरडी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से? ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वो कौन थी से। लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्य फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्य फिल्म फना कोमदा खसों दूर कैलाश खेर एशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिलविल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्ता इस het volgende liedje via Radio SBS किस्तों।

बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है तो अभी।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।